करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही न्यू वीडियो को देखने के लिए आपके अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एंड नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन भी दबा दें। और अपकमिंग वीडियोस के टॉपिक के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करें।

बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही न्यू वीडियोस को देखने के लिए आपके अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एंड नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन भी दबा दें और अपकमिंग वीडियोस के टॉपिक के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करें।

0: टीका टिप्पणी होवेगी, चलंत मुद्दिया ते मसलिया ते
1: तिरछी नजर रवेगी, कनेडा ते दुनिया दी सियासत ते
0: छह पर लगेगी नवे पुराने गीता दी
1: बाता होनगिया सभ्याचार ते अमीर विरसे दिया
0: सुनना जरूर लाइव शो विद शमी पठल 5:30 AM ते सोमवार तो शुक्रवार
1: बिजनेस दी प्रमोशन ली आज ही कॉल करो 416-917-7763 416-917-7763

करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही न्यू वीडियो को देखने के लिए आपके अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें एंड नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन भी दबा दें। और अपकमिंग वीडियोस के टॉपिक के लिए कमेंट बॉक्स

चूसर का खूबसूरत लोग खूबसूरत पुलकन सी है चलो डिजिटल ए एम फ्रीकुएंसी राइट टोरंटो पेंसिल्वेनिया न्यूयॉर्क वाशिंगटन न्यू जर्सी तक जिसे सुन रहे हो उतने सामने तुम बॉर्डर टू बॉर्डर रेंज यानी कि एम 530 डाल तुम सुन रहे हो इस समय अगर ओंटेरियो दे विच सार्निया दे बॉर्डर तो लैके लंडन किचनर वॉटलो कैम्ब्रिज ब्रेंटफर्ड होंदे हुए हैमिल्टन ते नैगरा फॉल दे बॉर्डर तक इधर 401 दे उत्ते तुसी सानू वुडस्टॉक तो लैके लंडन किचनर वॉटलो कैम्ब्रिज होंदे हुए गोल्फ और मिल्टन ओंटेरियो जिथे सुन रहे हो उत्थे GTA इंटायर दे विच ते ईस्ट दे विच सानू तुसी जो ओशवा कर्टिस बॉमनविल हैम्पटन क्रॉस करदे हुए न्यू टनविल तो लैके न्यू कैसल आ जांदा अगे एक शहर ते उस तो बाद तुसी जो सानू न्यूटनविल तो बाद बेलवल तक सुनते हैं कोबर क्रॉस कर जाने हो ते ईस्ट दे विच सानू तुसी नॉर्थ दे विच हाईवे 7 है टूवर्ड्स ऑटवा जाने हो लिंजी पीटरब्रो क्रॉस कर जाने हो बड़ा सोहना जिहड़ा हैगा चैनल सुन सुन रहा हुंदा ते नॉर्थ दे विच तुसी सानू 400 सीरीज इंटायर जिहड़ा हैगा इहनू कवर करदे हां असी जाने हो रेलिए तक ते दूसरे पासे ग्रैवन हास दे उत्ते सी 11 हाईवे दे उपर ते सानू तुसीं नॉर्थ विच टोबर मरी तक सुन रहे हो यानी कि तकरीबन 1000 किलोमीटर दे रेडियस ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ विच सब तो वड्डा जिहड़ा हैगा कवरेज एरिया डिजिटल फ्रीकुएंसी राही एम 530 30 ईयर प्लस समां हो गया साउथ एशियन लोगों नू सर्व करदे हन आगाज़ उस हमेशा इस अपने शो दा उस परमपुरख परमेश्वर दे नाम उटासना जिस दे नाम उटासना आगाज़ दुनिया दी हर एक शायद उम्मीद दिन खुशगवार रहेगा चढ़दी कला वाला निरपौ निर्वैर रहेगा मुस्कुराहट चेहरे का हिस्सा रहेगी रोशनी रस्ते दिखाएगी तुसी चलते रहोगे ते अज दे शो दे विच जिथे चलेगा चलूंगी नाल तेरे टिकटां तो लै ली तुहाडी टिकट टू कॉल इन स्टूडियो 905-673-3337 905-673-3337 ते सानू कॉल कर रहे 905-673-3337 ते तुसी साडे नाल गलबात कर रहे हो

0: Aldi Poncho, 30 Rambler Drive, Brampton. Major intersection, Steels and Kennedy, 90545-12600.
1: Hello, bro. Kithe hai tu?
2: Main client ka milne ja raha hu. Soch raha si Tim Hortons pe baith jaiye.
1: Oh, yaar. Ye to old school ho gaya. Hun ta client meetings classy honiyan chahidiyan ne. Nazara restaurant leke jao unnanu. Private booths ne, full privacy mildi hai. Free Wi-Fi, te luxury ambience. Business meeting bhi set ho jandi hai. Te khana bhi bahut vadhiya.
2: Oho, ye ta proper professional meeting ho gayi.
1: Nazara restaurant, 30 Rambler Drive, Brampton. Major intersection, Steels and Kennedy. Hune call karo, 905-451-2600. 905-451-2600.
3: पापा पापा सुनते क्यों नहीं, चॉकलेट लेनी है।
4: अजी सुनते हो, कहाँ गुम हो?
5: अरे महेश अभी तक ऑफिस नहीं आए, पता नहीं मीटिंग थी। हेलो हेलो हेलो।
6: जब मैं रेडियो आवाज सुनता हूँ तब तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। बम टू बम ट्रैफिक एंड बम टू बम कॉल्स, ऐसा ही होता है जब आप सुनते हैं हर सुबह 9 to 10 मंडे टू फ्राइडे एंड सैटरडे 11 to 1 रेडियो आवाज।
7: You are listening to your favorite radio show, Radio Awaz, The Voice, Zindabad, Zindabad. For advertising, please call 416-518-3200.

से आदत भी हैगी है कि सारा कुछ सही चल रहा होगा, जिथे थोड़ी जी कोई कमी हुंदी है उन्होंने फट उहदे वाल निगाह जाती है, तो फिर उन्होंने कहनों भी कतराते नहीं। बहुत सारे लोग है जिहड़े कहिंदे नहीं कोई नहीं, जिहड़ी जिहड़ा प्लस पॉइंट है जिहड़ा पॉजिटिव पॉइंट है उहनूं असीं देखिए उहदे बारे असीं दसीए, पर गलत बारे नहीं, है ना। पर अपनी फितरत यह हुंदी है वी जिहड़ी गलती हुंदी है उहनूं असीं बड़ी छेती फड़दे हाँ, उहनूं गल नूं बड़ी छेती चकदे हाँ। जिवें कोई भी बंदा वधिया वधिया वधिया काम करदा आउंदा होवे उहनूं नहीं सराहा जाऊगा, जिथे उहने गलती करती ते फिर कह दिंदे उहने आह करता ते उहने उह करता, है ना। सो इस चीज़ तों वैसे बचना चाहीदा, जिहड़ियां छोटियां मोटियां कमियां हुंदियां उहनूं अखों परोखे जिहड़ा कर देना चाहीदा। सो लओ जी समां इस समय 10:19 हो गए, ते इक तां पहिलां तुहानूं आपां खबर देईए कि भारत पाकिस्तान जिवें आपां कहिंदे आ वधिया संबंध रहिण, है ना, भारत पाकिस्तान दे। सो कहिंदे आ वी दोन्ने पास्यों सिख संगतां जिहड़ियां, जिहड़ा श्री करतारपुर साहिब दा लांघा है ना, कहिंदे आ उहनूं छेती खोल दित्ता जावे तां कि जिहड़े लोक जिहड़े श्रद्धालू है इंडिया तों जांदे आ उह दर्शन कर सकण, क्योंकि अग्गे हुण श्री गुरु नानक देव जी दा गुरपुरब आ रहा है ना, प्रकाश पुरब। सो उस मौके संगतां उत्थे जांदियां या वैसे भी जांदे रहिंदे आ जिहड़े श्रद्धालू है दर्शन करन वास्ते। जदों जिहड़ा एक होया सी ना जिहदे विच बहुत सारे लोग मार दित्ते गए सी, उस तों बाद ऑपरेशन सिंदूर होया सीगा, ते उदों तों बाद इह लांघा जिहड़ा बंद कर दित्ता गया सी। पर हुण कहिंदे आ वी जीरो लाइन है जिहड़ी दोनों देशों की बाउंड्री जिन्हों आप कहते हैं, है ना, बॉर्डर है, उत्थे जिहड़ा हैगा लांघा खोलण दे लई जिहड़ी सिख संगतां ने अरदास कीती है, उधरों पाकिस्तान दे जिहड़े श्रद्धालू पहुंचे है जी इधरों इंडिया दे। सो उन्होंने जिहड़ा हैगा अरदास कीती है भी ये जिहड़ा श्री करतारपुर साहिब दा लांघा छेती खोल दिता जावे तां कि श्रद्धालू जा सकन श्री करतारपुर साहिब के दर्शन मेले कर सकन। इस मौके पर कहिंदे श्री अकाल तख्त साहिब दे जिहड़े जथेदार हैगे आ ज्ञानी कुलदीप सिंह गड़गज जी, वह भी उत्थे पहुंचे, सो अरदास की। सो होप करते हैं कि बड़ी छेती सरकार जिहड़ियां सुनणगियां जी, और पाकिस्तान वालों ते इंडिया वालों, है ना, यस किया जाऊगा। तो जे आपां गल करिए जी इस समय दे विच आपां चलो बड़ा वो करते हैं कि अपनी कौम पूरे वर्ल्ड दे विच छाई हुई है, वधिया काम किए जाते हैं, हर एक खेत्र दे विच पलांगा पट्टिया जांदियां, पर हुण इस समय दे विच आपां देख रहे हैं कि ना बड़ा कुछ इदां दा हो रहा जिहड़ा नहीं होना चाहिए। सो लेटेस्ट ही एक थाईलैंड दे विच होया कि जिहड़े एक बुजुर्ग सीगे उहनां दी पग नूं छालिया गया, है ना, यानी कि उहनां दी पग उतार दित्ती गई। दो लेडीज़ सीगियां जिन्हां ने इह कीता, ते रीज़न की सीगा वैसे कहिंदे उह कोई सामणे आया नहीं, पर उस तों बाद कहिंदे भी SGPC ने दरखास्त कीती होणी आ उत्थे, ते उस तों बाद उत्थे कहिंदे जिहड़े हिंदू भाईचारे दे कुछ लोग सीगे उहनां ने हैल्प कीती, उहनां ने रिपोर्ट कीती। उस तों बाद जदों कंप्लेंट कीती फिर इन्हां जिहड़ियां दो लेडीज़ सीगियां उहनां नूं अरैसट कीता गया, फिर उहनां तों पुछया गया, पर उह गल सामणे आई नहीं वी रीज़न की बणिया कि वैसे ही करता, क्योंकि कई वारी ना लोग शरारत कर देंदे आ, आपां नूं पता ही नहीं लगदा वी रीज़न की बन जांदा क्यों इदां करदे आ लोग, है ना। ते उस तों बाद जदों उहनां नूं अरैसट कीता गया फिर उहनां ने उह बाबा जी तों माफ़ी मंगी, सो फिर चलो माफ़ कर दिता गया। पर सोशल मीडिया ते वायरल हो रही है बहुत ही ज़्यादा वीडियो, और इहदे विच इह वी कहा गया कि जिहड़े बजुर्ग दी पग उतारी गई, बेइज्जती कीती गई किस्म दी, है ना, ते रीज़न वी नहीं दस्सिया गया भी की सीगा। दूजे नंबर ते उहनां दी तस्वीर तां दिखा दित्ती भी कौण बजुर्ग उह हैगे आ, बट जिहड़ियां लेडीज़ जदों इह वारदात हो रही सी उदों किसी ने वीडियो बनाई उह तां चलो देख गई, पर जिहड़ा अपना जदों उन्होंने माफ़ी मंगी है ना, वह चीज़ नूं उन्हां दी फोटो जिहड़े फेस है ना उन्हां नूं ब्लर जिवें कर दिंदे आ भी दिखे ना, उहदे लई कई लोग जिहड़ा उस चीज़ दी आलोचना कर रहे आ भी क्यों इदां कीता गया, उन्होंने तां गलत काम कीता सी, उहदी माफ़ी मंग रहियां सी। सो उन्हां नूं भी पूरा उन्हां दी फोटो फेस जिहड़े आ जाहिर होने चाहीदे सी। एक इह घटना हुई है, ते इस तों इलावा जेकर तुसीं देखिया होवे UK दे विच उह वी बड़ी वीडियो वायरल हो रही है। UK दे विच एक बस ड्राइवर है, बस ड्राइवर दे नाल भी बड़ा जिहड़ा बद सलूक उहदे नाल कीता गया एक व्यक्ति वल्लों, ते उहने उहनूं बड़ा हिट किया,
ਜਿਹੜਾ

0: chief underwriter and certified health insurance specialist from Top Choice Insurance.
1: ए टू जी किचन कैबिनेट बई वाह क्या किचन कैबिनेट तैयार करते हैं लकी भाजी दी बनिया किचन कैबिनेट देख के गुआंढी भी बहाने नाल तुहाडे घरे आउंदे हन शीशे नाल भरिया किचन कैबिनेट वास्ते डिजाइनर किचन कैबिनेट वास्ते ए टू जी किचन कैबिनेट 416-720-7073 905-720-7073 ते कॉल कर सकते हो
2: नजर बदलो नजारे बदल जाएंगे आप भी अपनी जिंदगी की खूबसूरती को देखें स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ जहां है वर्ल्ड क्लास क्वालिटी डिजाइनर सनग्लासेस आई ग्लास फ्रेम्स एंड लार्ज सिलेक्शन ऑफ कॉन्टैक्ट लेंसेज
3: गेट सिलेक्टेड फ्रेम रेगुलर सिंगल विजन लेंसेज फॉर जस्ट $129 35 रेजोल्यूशन ड्राइव ब्रैम्पटन इन वॉलमार्ट प्लाजा कॉल 905-460-8888 दैट्स 905-460-8888
2: सर्विंग फ्रॉम टू लोकेशंस बेस्ट सर्विस बेस्ट प्राइस स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ

0: लाओ जी चक्को फिर खुशखबरी ब्रैम्पटन निवासियां ले खुशखबरी हुण जदों भी तुसी कैनेडियन इंडियन या पाकिस्तानी ग्रोसरी खरीदना चाहो तां ब्रैम्पटन विच इंडियन फ्रूट लैंड दीआं चारों लोकेशनां विचों जिथे मर्जी आ जाओ चाहे 15 फैंडोवे ब्रैम्पटन होवे जां दूजी लोकेशन 45 डस्ट ड्राइव ब्रैम्पटन या फिर तीजी लोकेशन 9985 मैकविन ड्राइव यूनिट 9 ब्रैम्पटन इंडियन फ्रूट लैंड ते हुण चौथी नवीं लोकेशन 1465 मेफील्ड रोड ब्रैम्पटन ग्रोसरी सब तो नेड़े इंडियन फ्रूट लैंड 905-456-9900
1: You're listening to Punjabi Versa Monday to Friday 11 a.m. to 12 p.m. For more information call 647-448-1000 Toronto's number one station

मेरी मोहब्बत है वो कोई मजबूरी तो नहीं, मेरी मोहब्बत है वो कोई मजबूरी तो नहीं, वो मुझे चाहे जाना चाहे कोई जरूरी तो नहीं, ये कुछ सामने हो मेरी आंखों के, वो सामने हो मेरी आंखों के जरूरी तो नहीं, कम है के बसा है मेरी सांसों में बस जरूरी तो नहीं।

0: मेरी सदा है तुम,
1: क्या था?
0: तुम दिल की धड़कन और मेरी सदा है तुम, मेरी पहली और आखिरी वफा है तुम। चाह है तुझे चाह से भी बढ़कर, मेरी चाहत और चाहत की इंतहा है।

0: नहीं आया, अभी नहीं आया कैसे तुम्हारी गल, कमाल हो गई, वेरी सैड। मेरे दिल ने जब भी दुआ मांगी है, मेरे दिल ने जब भी दुआ मांगी है, तुझे मांगा है तेरी वफा मांगी है। मेरे दिल ने जब भी दुआ मांगी है, तुझे मांगा है तेरी वफा मांगी है। जिसको देख कर दुनिया को रश्क आए, जिसको देख के दुनिया को रश्क आए, तेरे प्यार करने की मेरी जान, सिंह हरजीत ने क्या मांगी है। अगे तुम समझ गए होने, मैंने लगे दसन की लोड़ नहीं, बिकॉज यू आर लिसनिंग पंजाबी विरसा। लो जी कॉल आई तो हैगी है, देखते हैं भी सब पता लग जाए किसी। हैलो,
1: हेलो, कैसे हो?
0: ठीक है सर, तुम सुनाओ।
1: लभ
0: लिया भरा साढ़े, बल्ले बल्ले बल्ले बल्ले, थैंक यू। साडा प्रोग्राम तद सुनना जे इंटरटेनमेंट बंदे आ, जे टेंशन फ्री होना फिर प्रोग्राम सुनना। सिंह हरजीत शो सुन रहे 11 दोबारा पंजाबी विरसा एवरीडे। भाजी 18 साल हो गए यार।

0: और ऑल योर ग्रोसरी नीड्स।
1: ले एको जगह तो कितने सारा कुछ मिलता है, दो चीजा ले एक जगह रुको फिर अगलिया दो दी दूजी जगह रुको।
0: इंडियन फ्रूट लैंड है सच्ची, वन स्टॉप फॉर ऑल योर ग्रोसरी नीड्स। सब तो वधिया ग्रोसरी, सब तो वधिया प्राइसेस से आज ही पहुंचो। हुन इंडियन फ्रूट लैंड दी सतवीं लोकेशन भी खुल गई है ऑन 25 सैंडलवुड पार्कवे नियर होरांथ्रो स्ट्रीट ब्रैम्पटन।
2: न चाचा जी आह 3 महीने हो गए थोनू मोड़ के ते कागज इकट्ठे कर दिया नू, हुण थई तुहाडी मोड़गेज प्रूव नहीं हुई है।
3: ओ तू रे फड़ा,
2: ओ मोड़गेज प्रूव करानी पता किन्ना औखा काम है, 100 पापड़ बेलने पैंदे आ,
3: लग्गिया गल्ला मारदा।
2: ओ चाचा जी मैं तां पहलां ही कहा सी भाई फर्स्ट या सेकंड मोड़गेज दी लोड़ होवे, रीफाइनेंसिंग दी लोड़ होवे, ट्रक लोन या इक्विपमेंट लोन चाहिदा होवे, बिजनेस लोन या प्राइवेट लैंडिंग दी ही लोड़ क्यों ना होवे, तां सुन दे मेरी गल, जे सारे पास्यों होगी ना तां बाह फड़ू कमलजीत सरा 416-356-1870 416-356-1870 पैगी पल्ले।
4: मॉर्गेज सॉल्यूशन दे गुरप्रीत समरा जी, तुहाडे मकान दी रिन्यूअल आ रही है, तुसीं अपनी मॉर्गेज बी सी लैंडर तो हटा के ए लैंडर नाल करवाउणी है और इंटरेस्ट रेट ते भी बचत करनी है, कॉल 905-460-9099। प्री अप्रूवल भी करवा के दिंदे हन तां कि कॉन्फिडेंस नाल मकान लै सकदे हो। 80-90 हज़ार बेस नूं बनाउण लई चाहीदे ने, मकान लैण वेले इस दा भी अरेंजमेंट कीता जांदा है। गुरप्रीत समरा नाल बैठ के डिस्कस करो, 2155 B स्टील्स एवन्यू नियर टॉप रूम यूनिट 32, 905-460-9099, 905-460-9099, 460-9099 इन्हां दा नंबर है।
5: देखो जी करता है अपना नंबर वन, पर मेरा दिल करता है अपना घर सारिया तो सोना होवे।
6: बस इनी गल हो कर।

0: समोसा एंड स्वीट फैक्टरी जिथे पाजी दिया सारिया आइटमा $4.75 पर पाउंड तो शुरू ने। बेसन पिस्ता रसगुल्ले फॉर जस्ट $5 पर पाउंड। तुहाडे इन्ने सालां दे भरोसे अते विश्वास कारण असी लेके आए हैं कस्टमर्स एप्रिसिएशन सेल 2026। 100% कैनेडियन मेड टॉप क्वालिटी स्वीट्स हुण 3 लोकेशंस तो सर्व करदे ने। 2 इन ब्रैम्पटन, 1850 एल्बन रोड, ईटोबीको। वधेरे जानकारी ले कॉल करो 416-213-1165।
1: The wait is finally over. Gordy Kuman of Remax Gold Realty proudly presents another golden opportunity to own premium retail and office space in South Caledon. Introducing Caledon Commercial Center, a new 15-acre commercial development located at the prime intersection of Highway 10 and Highway 410. Retail and office units are now available for sale. Secure your space in Caledon's next commercial destination. Contact our team at Remax Gold Realty to book your unit today.
2: बॉलीवुड मूवीज ने टीवी शोज वेब सीरीज हिंदी पंजाबी लाइव टीवी चैनल इंजॉय करने वर्ल्ड्स बेस्ट हाईएस्ट क्वालिटी वाला आईपीटीवी बॉक्स है। ते नाले टिलो वीडियो कोल गुरबानी रेडियो भी है। ते डिलीवरी बिल्कुल फ्री। होर दस क्या चाहिए। पाजी सेलिब्रेशन 40 इयर्स इन एंटरटेनमेंट बिजनेस।
3: डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है।
2: पर टिलो वीडियो ते जदों मर्जी आ जाओ। एबनीजर एंड गौर रोड 905-204-1313 जां tillobideo.com। होर कोई सेवा।
4: ओ रोकी तू अपनी इंश्योरेंस किस तो करवांदा यार।
5: ओए कल्ला मैं नहीं अपनी कम्युनिटी दा हर बंदा इंश्योरेंस एक्सपर्ट मोना मेंगी जी कोल करवांदे ने।
4: वाह यार नंबर ता दई मोना जी दा।
5: हां जी तुसी भी नोट करो इंश्योरेंस कोई भी होवे
6: इंश्योरेंस फॉर यू दी मोना मेंगी जी।
5: जेडे लाइफ इंश्योरेंस क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस सुपर वीजा इंश्योरेंस अते हर तरह दी इंश्योरेंस दे लई भरोसेमंद नाम है। हुणे कॉल करो 416-509-1509 ते।
6: याद रखो मोना मेंगी फ्रॉम इंश्योरेंस फॉर यू
5: 416-509-1509
6: और विजिट insuranceforyou.ca।
7: नजर बदलो नजारे बदल जाएंगे। आप भी अपनी जिंदगी की खूबसूरती को देखें स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ जहां है वर्ल्ड क्लास क्वालिटी डिजाइनर सनग्लासेस आई ग्लास फ्रेम्स एंड लार्ज सिलेक्शन ऑफ कॉन्टैक्ट लेंसेज।
8: गेट सिलेक्टेड फ्रेम रेगुलर सिंगल विजन लेंसेज फॉर जस्ट $129। 35 रेजोल्यूशन ड्राइव ब्रैम्पटन इन वॉलमार्ट प्लाजा। कॉल 9054608888 दैट्स 9054608888।
7: सर्विंग फ्रॉम 2 लोकेशंस बेस्ट सर्विस बेस्ट प्राइस स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ।
9: खुदा ना करे अगर आपका कार एक्सीडेंट हो गया और आप कानूनी मदद लेना चाहते हैं तो ना सिर्फ हम आपके हक का जायज ज्यादा से ज्यादा पैसा लेकर दिलवाते हैं बल्कि अपनी फीस भी आपका क्लेम दिलवाने के बाद ही लेते हैं। और मैं आपकी अपनी अंजुम कुरैशी आपकी अपनी जबान बोलती हूँ और हमारे पर्सनल इंजरी लॉयर्स की टीम आपके क्लेम को प्रोफेशनली हैंडल करते हैं। और अगर अपने क्लेम के सिलसिले में आप हमारे लॉयर के साथ मीटिंग करना चाहते हैं तो हमारी कंसल्टेंसी बिल्कुल फ्री है। आज ही मुझे कॉल करें। आपके कार एक्सीडेंट केस में आपका इन्फॉर्मेशन लेना आपका हक है। 416-570-0157।
10: जे मैनू यार ना मिले ते मर जावा। जे मैनू प्यार ना मिले ते मर जावा।
11: What's up everybody, this is Jasmine Sandler ते तुसी सुन रहे हो वतनों दूर with सुखी निजर।

0: मेरी बेटी दी क्लास विच 33 बच्चे हन। ओ दसदी है कि उत्थे किसी भी चीज दी पूरी सुविधा नहीं है। भरी हुई क्लास अते रौला परेशान कर देंदा है अते पूरी मदद भी नहीं मिलती है। यह इसलिए है क्योंकि डग फोर्ड ने 2018 तो साढ़े सरकारी स्कूलों के बजट विचों $6 बिलियन कट दिते हैं। साढ़े बच्चे बेहतर के हकदार हैं। आओ सरकार नूं कहिए साढ़े बच्चों में निवेश करो, क्लास साइज दुरुस्त करो। एलिमेंट्री टीचर्स फेडरेशन ऑफ ओंटेरियो वालों एक सुनेहा।
1: This is AM 530, CHLO AM, serving Brampton, Mississauga, Toronto, the GTA, and the world at am530.ca. The opinions expressed in the following program are those of the host and their guests and do not reflect the views and opinions of the management and staff of CHLO AM 530.

तो देश प्रदेश प्राइम टाइम रेडियो या चलो एम 530 24/7 जिन्हें भी प्रोग्राम आंदे ने उन्हां नूं सुनन वास्ते जां देश प्रदेश नूं लाइव देखण वास्ते लॉग इन करो साडी वेबसाइट नूं www.deshpradeshradio.com या www.deshpradeshtv.com लाइव सुनना चाहुंदे लाइव ते क्लिक कर लो जे वाच करना चाहुंदे हो तां ओह ते क्लिक करो जां फिर अपने आईपीटीवी बॉक्स दे उत्ते पंजाबी सैक्शन क्लिक करो ओहदे उत्ते जाके देश प्रदेश टीवी नूं क्लिक करो ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਵੀ ਸਕਦੇ

0: सिर्फ ऑनलाइन कोर्सेज में डील करते क्योंकि हमारे क्लाइंट्स लाइक कुछ बच्चे मैनेज करने में इतना बिजी है, राइट अपने कोई जॉब कर रहा है, कोई अनएम्प्लॉयड है, कोई उबर ड्राइवर है, हाउस वाइफ है, आसान है, ऑनलाइन है. जैसे बिजनेस का कोर्स हो गया, अकाउंटिंग का हो गया, सप्लाई चेन का हो गया, और अगर आपको स्पेसिफिक कोर्स चाहिए, एचवैक भी है, अर्ली चाइल्डहुड असिस्टेंट भी है. तो मतलब अगर आप आसान कोर्स चाहते हैं हमारे पास आसान है, अगर आप हार्ड कोर्स चाहते हैं स्किल वाले हमारे पास वो भी है. आपको फंडिंग 50,000 से $1,70,000 तक की आती है, फंडिंग भी आई, स्किल भी है, और 1.5 लाख तक की फंडिंग आ गई. कहाँ मिलेंगे इस टाइम पे? गवर्नमेंट दे रही है, पीछे ना रहिए, बहुत लोग की लाह ले चुके हैं, तो उसी पीछे ना रहो.
1: तो एक चीज दसो कि वैसे तो काफी सारे जेडे होर वे एजेंसीज होंगे वो भी ऑफर कर रहे होंगे सेम कोर्सेज, लोग तुहानू ही क्यों चूज करन?
0: हमारी फीस क्रिस्टल क्लियर है, आ करके एयर पे बताते हैं, 199 है, काम होने के बाद लेते हैं. मुझे अभी तक सुबह के 6 इंट्रैक आ चुके हैं $200 की, वो अलग बात है. हमारी फीस 199 है, लोगों में 200 देते हैं बिना मांगे, और लाइक काम होने के बाद लेते हैं. एक तरफ आपको फायदा है 50,000 से $1,70,000 तक का लोन 0% ब्याज पे, और अदर एंड हमारी फीस क्रिस्टल क्लियर 199 है काम होने के बाद. तो ईमानदारी आपकी चेक होती है, हमने पूरा एंड टू एंड सब कुछ ट्रांसपेरेंट रखा है. ऑफिस एड्रेस है जी 218 एक्सपोर्ट बुलेवर्ड हरेडरी डेयरी पे. कॉल करें, एस्टिमेट कराएं, कोई चलाकी नहीं है, कोई मीठी बातें नहीं है. हजारों को सर्च कर चुके हैं, 8 साल लोग, कोई भी दो नंबरी नहीं है इसके अंदर. 400 जब गवर्नमेंट आपकी यूक्रेन को इतना पैसा बिना गारंटी के देती तब तो आपको हैरानी नहीं होती, जब आपको दे रही तब आपको हैरानी हो रही है. 437-234-3175 कॉल करो, 437-264-3175.
2: बहुत शुक्रिया. रेडियो प्रोग्राम देश परदेश प्राइम टाइम रेडियो. अच्छा वक्त मूवी जी सी बलराज सानी का बड़ा अच्छा रोल से, बड़े अपने समय के बहुत थोड़ा काम किया बलराज सानी साहब ने ना.
1: हाँ जी.
2: तो बाकी सुनील दत्त साहब तो है ही, एक तुम पता सुनील दत्त साहब से, राजकुमार से, शशि कपूर से मूवी के बच्चे. अपने समय की हिट मूवी से है, जाने के गोल्डन जुबली हुई सी है ना
1: जी.
2: तो वह गीत आप लें परमाशी गीता, लव करो, एंजॉय. रेडियो प्रोग्राम देश प्रदेश प्राइम टाइम रेडियो.